आदरणीय थरांगा सुभमंदारम रैक्वेवा ओया कियनवा मामा कॉल नकलत मैसेजेस नुदुन्नत लागन नहीटियात मुने गहने नतत किसी माहितियाक नतत काले कुच्चर गेवनत अतर मगें हरिला गियात आदरणीय ओया तमाई मगे जीविते मामा देखे बलासन महीने कियरा इन्नो ने में काले गिये आई मतक वेन्ने ओया आवमाई ओया नती था ना मगे हेट दीना अंदर कुटिया के गेवी आवी मंग साशी वह वाला कुल दाखिने बीटा वह गुरल्लान सत्तु वेते नुबे दाखिती दी दाने ही माहट महा में रखला बुना वागे कलक गतवे हमुवुना आहो थम पुतुना बिरिंद समगेन खड़ा वेटुना ही न मालिगा भूमि कंपा वाकुन लेसिन ऐहरुने मंगे अस्सी लागोस सेमियानी दिया ही मालंगेन हील लिनी मटे एकवरम ऐसे ही ने अग्नि सावेन चतुरिका दबरेलेन. Thank you.